प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर वो सर्विस है जो आपके लिए एलिस स्प्रिंग्स में अवेलेबल है। इस सर्विस में आप जीपी, एजेंट केयर, मिडवाइफ और डेंटिस्ट की सुविधा इस्तेमाल कर सकते हो। आपको अपने वीज़ा के मुताबिक ये सर्विसेज मिल सकती है। आपके सवाल के लिए आप मिस का प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर वो सर्विस है जो आपके लिए एलिस स्प्रिंग्स में अवेलेबल है। इस सर्विस में आप जीपी, एजेंट केयर, मिडवाइफ और डेंटिस्ट की सुविधा इस्तेमाल कर सकते हो। आपको

0: www.ahimsa.org.au पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं मल्टीकल्चरल कम्युनिटी सर्विसेज ऑफ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया मिस का, जिसको सपोर्ट दे रहे हैं नॉर्दर्न टेरिटरी प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क।
1: The Multicultural Access to Primary Healthcare Program is managed by Multicultural Community Services of Central Australia and supported by the Northern Territory Primary Health Network and 8CCC.
2: OFR Digital, entertaining the nation.
3: धन्यवाद न्यूट्री प्लस। आजको खाना तपाईको नाम।

0: பண்ணு நாம பாபா கஷ்டம் இங்க
1: சக்சக்கி சிறுபுள்ளி சன்சல நக்கல் வீஸ் பாப்பா சுத காட்டு நல்ல கப்பா நான் கப்பா சுல்பி பித்திரபட்டு ரொமால் பண்ணி हिरो भन्ने ठुलो सपना थियो तेरो बाबाको दिलीप राई माझीको ठुलो फ्यान नकल पनि तँ सधैँ उतार्ने सबैको प्यारो मान्छे नाच्न गाउन भनेपछि हुरुक्कै गाउँभरिका सबै मान्छे बोलाएर रातभरि गाउनुहुन्थ्यो तेरो बाबाले गर्दा अलिअलि मैले नै गाउन जानेको थिएँ

0: यो त त धरे रिसाइसन बोलेनन खै
1: खै यति करलान्दैन न नगाउने के गथे
2: यहाँ पिराली छ क्या
3: हे के भनम खै